श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: ये शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें
1: सच।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: गोगा, ये फादर का बच्चा कौन है?
1: फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

ए घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: रोजी, ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है,
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया, रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो-यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

الله الله الله الله.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 1 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

चूला।

0: ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: अरे अरे रे अरे रे रे अरे ये क्या भूल भुलैया रे भैया।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ऑफ द वीक में सुनिए दिए गए स्टार मेहमान पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का स्टार थीम चॉइस का ये प्यारा सब शो। और आज के जो शब्द हैं हमारे जाकिर मौलाना जी ने दिया है वो है गरजना, बरसना, चमकना, भींगना, गिरना, डूबना, उड़ना, जलना, बुझना और धड़कना। लेकिन इन सब के अलावे आप इन बारिश पर कोई भी गाने भेज सकते हैं, यानी बारिश मतलब यानी बारिश पर जितने तरह के गाने, यानी बारिश में यानी बादल पर हो गए, हवा पे हो गए, मतलब यानी बारिश संबंधित यानी मौसमी यानी मानसून संबंधित जितने भी गाने होते हैं आज आपके लिए छूट है, बिल्कुल भेज सकते हैं जो भी गाने आप समझे, मतलब जो लगे कि हाँ ये यानी गाना ये बारिश पर होगा तो भेज सकते हैं। जैसे कि टिप टिप बरसा पानी, बिल्कुल भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, लेकिन सबसे पहले आप मेरे पसंद के गाने को एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे, और मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त अमन। और दोस्तों जुड़ चुके हैं सबसे पहले हमारे सरफराज जी, सरफू भाई साउथ अफ्रीका से बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और नाहिद अंसारी जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम असलाम, वेलकम है आपका भी। और बी के पंत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं बी के पंत जी। और साथ साथ सर्वेश भगत जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और हमारे प्रमोद कुमार जी आगरा से जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका। काजल झक्का जी सीतामढ़ी बिहार से वेलकम है। एमडी फैज आलम जी मोहिउद्दीन नगर से जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और जाकिर खान जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। मीना इब्राहिम जी यूएस से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और रंजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं रंजीत कुमार जी, ये है मुजफ्फरपुर बिहार से। और सर्वजीत सेठी जी हैं, आरिफ सिंधी जी, सभी का वेलकम करते हैं। जो भी दोस्त चोरी चोरी चुपके चुपके सुनते हैं सभी का वेलकम करते हैं। और सबसे पहली जो मैं पसंद शामिल करने वाला हूँ वो हमारे सर्वजीत सेठी जी का ही है, और सुनना चाहते हैं जिहाल मस्ती मकुम बरंजिस, और सुनाई देता है तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। बिल्कुल

0: और कुछ दोस्तों का ये कहना है कि आज का नेटवर्क बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। जी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ तो मेरे पास बिल्कुल नेटवर्क सही चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है। जी बिल्कुल, और आजकल की चूंकि बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसलिए नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकते हैं। वैसे बहुत से दोस्त जुड़े हैं, सभी का वेलकम करते हैं और पहला फीडबैक शामिल करते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, सुसंध्या, नमस्कार, नमस्ते जी, हम भी जुड़े हुए हैं और आपका ओपनिंग सॉन्ग लाजवाब अच्छा लगा गाना, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी, और साथ ही साथ हमारे यानी कि प्रकाश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं प्रकाश जी। ओके जी, और नाही जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल, ये डिमांड है हमारे सर्वजीत सेठी जी का, इनको धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। मीना जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, और हमारी जुड़ चुकी है नंदनी माँ जी, बहुत बहुत वेलकम है माँ जी, लिखती है गाना बहुत प्यारा है। जी माँ जी, ये तो आपको भी पसंद और मुझे भी पसंद है। जुड़ चुकी है एस खानम जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, खुश आमदीद। एंड रंजीत कुमार जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग का आगाज हुआ है सर जी, मजा आ गया सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल डिमांड जी, और बीके पंत जी लिखते हैं कि जिहाल मस्ती मुकुम बनंजी सुनाई देती है, जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, बिल्कुल हमारा ही दिल है। ओके, आत्माराम जी लिखते हैं कि अमन सर जी प्रोग्राम से हम जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। साथ ही साथ जागीर खान जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर सॉन्ग है। ओके जी, और बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि नेटवर्क बहुत धोखा कर रहा है। अच्छा जी, क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यानी किस कंपनी का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। ओके, लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं और दोस्तों को नमस्कार कह रहे हैं, वेलकम है आपका भी। दिलीप राम जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और ये क्या कहते हैं, इनकी भी सुना।
2: गाना तो बहुत सुपर था लेकिन सुनने में मजा नहीं आया, कट कट गया, नेट खराब चल रहा है।

0: ओके जी, नेट खराब चल रहा है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे प्रियंका जी, बहुत बहुत वेलकम है। लिखती है कि नेटवर्क बहुत इशू कर रहा है और सॉन्ग चेंज हो रहा है बार बार। ओहो, मतलब यहाँ तो ओके सब शो कर रहा है लेकिन फिर कैसे शो चेंज कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब तो देखना पड़ेगा, एक इसका मतलब कि मुझे अपने फोन से कनेक्ट करके चेक करना पड़ेगा, मतलब मोबाइल से कनेक्ट करके चेक करना पड़ेगा कि इसका नेटवर्क वहाँ पे कैसे शो कर रहा है। लेकिन इसके लिए मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर कभी डिस्कनेक्ट होता है बीच में तो मैं कोशिश करूंगा। ओके, कोई बात नहीं। चलिए फिलहाल अगला जो यहाँ पे नगमा है वो मैं सुनवाता हूँ आप सभी को। और ये नगमा का डिमांड आया है हमारे पास अशोक दशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सर्वेश भगत जी और सैयद यूनुस जी का। ये सभी सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा गाना। और वो कौन सा गाना है तो हमारे सबसे पहले सर्वेश भगत जी का ही हम सुन लेते हैं। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सर्वेश भगत जी।
1: अरजय अमन सर जी, सुजन दया, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है संग्राम और गाने का बोल है उड़ते बादल से पूछो। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरत अंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, बस किशोर भगत, आनंद शेखर, प्रकाश, सनी कुमार, मीन कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी, सुंदर ताकि मुरे जी, आर जे रत्ना जी, आर जे वंशिका जी, आर जे एम एस परमार जी, आर सभी आर जे, आर सभी भाई, आर सभी बहन, आर सभी लिसनर इसमें शामिल, सबको सुनाद दीजिएगा। जय राम जी। अमन सर जी,
2: अस्सलाम वालेकुम। आर जे अमन सर जी, मैं अष्टी जिला जालना महाराष्ट्र से सैयद यूनुस बात कर रहा हूँ सर जी। और आज ये स्टार थीम चॉइस और मेरी आज की थीम है सर जी उड़ना। उसी मौके पर एक गीत लेकर आया था, फिल्म का नाम है संग्राम और गीत के बोले उड़

0: पूछो इनको पता है मेरा नाम, मैं काशी इनके सुबह शाम। ये गीत के बोले सर जी। और इस गीत के साथ मेरे कुछ चंद दोस्त लोग, सबसे पहले तो भाई आरजे अमन सर जी, आप
1: थैंक यू सो मच।
0: ओ वेलकम वेलकम वेलकम अमन सर जी, आपकी सुंदरता की मूरत भी सर। वेलकम सर। आत्माराम पाटिल जी है, अशोक देशमुख जी है, सर्वेश भगत जी है, और जितने भी रेडियो हॉट स्टार सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस, उन सबको ये सॉन्ग डेडिकेट है। ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना।
1: वेलकम जी। और जैसे कि बता दूं कि बहुत से दोस्त ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आप रेडियो गाना पर सुन सकते हैं, तो रेडियो गाना पर भी शायद वहाँ पे सही चल रहा है, वहाँ पे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल गाने का एंजॉय कीजिए, उड़ते बादल से पूछो और बहती नदियाँ से पूछो, एंजॉय कीजिए।

0: क्या कहते हैं?
1: अरजय अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा चार भाई का, हमारा अशोक देशमुख भाई जी का, आत्माराम पाटिल जी का, सैयद जी का, चारों भाई का मिली जुली फरमाइश आप शामिल कर दिए। थैंक यू, धन्यवाद।
0: वेलकम जी, वेलकम जी। और बी कपन जी लिखते हैं कि बेहतरीन डिमांड है सभी दोस्तों की मिली जुली, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और प्रियंका जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है, उड़ते बादल से पूछो, और उनको पता है मेरा नाम। जी बिल्कुल। और यहाँ पे प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड सर्विस भगत जी, सैयद यूनुस जी, आत्माराम जी, अशोक देशमुख जी, सभी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं ये फीडबैक।
2: थैंक यू आरजे अमन सर जी, हमारा गीत प्ले करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं सैयद यूनुस, सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दी। थैंक यू आरजे अमन सर जी।
0: और आत्माराम जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। ये क्या कहते हैं, सुनते हैं।
3: मिली जुली डिमांड की है, बहुत अच्छा लगा। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिन से एमडी फैज आलम, मोहिउद्दीन नगर।
0: ओके जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और मोहन निवारी जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं अमन सर जी, वेलकम करते हैं। और बाबूलाल जी लिखते हैं

और बता दूं कि ये डेडिकेट है यानी उनके पंडित जी को। और इनका एक सवाल भी है कि आप ये बताइए कि कम सोने से नींद ज्यादा आती है या टेंशन होने से नींद ज्यादा आती है। अच्छा जी,

0: जी, थैंक यू।
1: ओके जी, मतलब के रेडियो हॉट स्टार के नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है, उसके सर्वर में प्रॉब्लम चल रहा है, और यहाँ पे रंजीत जी क्या करते
2: हैं। सर जी, इतना मैं कहना चाहूँगा, रेडियो हॉट स्टार पे तो नेटवर्क इशू बने हुए हैं, और रेडियो गाना पे बहुत अच्छा चल रहा है। सभी श्रोताओं को बोलिए रेडियो गाना चलाए, धन्यवाद।
1: ओके जी, तो जो भी दोस्त हैं वो रेडियो गाना पर सुन सकते हैं, क्योंकि जिनको रेडियो हॉट स्टार पर प्रॉब्लम हो रहा है वो रेडियो गाना पर ट्यून कर सकते हैं, वहाँ पे उनको सुनाई देगा बिल्कुल अच्छे से। दोनों का नेटवर्क यहाँ सेम है, लेकिन पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बीके पंच लिखते हैं कि बहुत ही सुपर हिट पसंद है, थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन चॉइस चल रहा है जी। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि एकदम अच्छा, धड़कने बढ़ जाती है, ये गाना सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और संध्या पटेल जी जुड़ चुकी है, वेलकम है संध्या पटेल जी। और एस खानम जी लिखते हैं कि एक बार थीम बता दीजिए। जी जी, मैं बताता हूँ, वैसे थीम के जो शब्द हैं वो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। आज के जो थीम के शब्द हैं वो गरजना और बरसना और चमकना, भींगना, गिरना, डूबना, उड़ना, जलना और ये बुझना, और उसके बाद ये धड़कना। लेकिन इन सब के बाद आप इन बारिश पर कोई भी गाने भेज सकते हैं, बिल्कुल। यानी बारिश से, यानी मौसम जो, यानी कि मॉनसून चल रहा है, यानी कि मौसम, यानी कि बादल पर और बारिश पे और मतलब यानी हवा पे, पानी पे, हर चीज पर जो भी यानी बारिश से संबंधित गाने हैं भेज सकते हैं, वो भी शामिल हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे यानी कि प्रियंका जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग सुनने को मिला है, और मोहन नवाज लिखते हैं कि सुपरहिट गाना और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लग रहा है। मीना जी लिखते हैं कि वाह, ये बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि अमन सर जी, रेडियो हॉट स्टार रुक रुक चला था भाई, उस समय से तो सुन रहा हूँ कि सभी दोस्तों का एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो बता तो रहा हूँ। वैसे अगला जो डिमांड है वो सुनीता गोप जी का है, और सुनीता गोप जी, डूब गया दिल, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल डूब गया दिल जी। और यहाँ पे सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी सुनीता गुप्त जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं। और रेडियो गाना पे बहुत अच्छा बज रहा है, उस पर हम भी बजा रहे हैं, अच्छा चल रहा है, थैंक यू। सभी भाई को बोलेंगे उसी पर चलाइए रेडियो गाना पे।
0: ओके जी, फिलहाल दोनों पर सुन सकते हैं, लेकिन रेडियो गाना पे अभी अच्छा चल रहा है सुनीता। और यहाँ पे संजय पटेल जी लिखते हैं कि अमेजिंग चॉइस है, मजा आ गया सुन के। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि मजा आ गया, लाजवाब डिमांड। एंड बाबूलाल अंजान लिखते हैं कि सुनीता गोप जी की डिमांड मुझे शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: वाओ, सो नाइस पसंद, एकदम जबरदस्त डिमांड, बहुत मजा आया। और रेडियो गाना पर एकदम सही चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है एमडी फैज आलम महीदीन नगर।
0: ओके जी, और यहाँ पे यानी कि प्रियंका जी लिखते हैं कि आज बहुत ही अलग अलग और अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिल रहे हैं, मजा आ रहा है बिल्कुल। मीना जी लिखते वाओ क्या बात है, लाजवाब डिमांड। ओके, अगला जो डिमांड है मेरे पास वो अमीना खान जी का है, और अमीना खान जी हमेशा आती है कुछ अलग तरीके गाने लेके आती हैं, और इनके गाने मुझे भी बहुत पसंद आते हैं, तो इंजॉय कीजिए अमीना खान जी। छोटे होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं।

और ये गाना सिर्फ 2 मिनट का ही था और प्रमोद जी लिखते हैं मीना जी की चॉइस मुझे जो ऑसम लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और बिट्टू कुमार लिखते हैं नमस्कार अमन सर जी, हम भी जुड़ गए, वेलकम है आपका भी। और साथ ही साथ जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड, ओके। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे अरुण मंडल जी का है, सुनना चाहते हैं कि चल दरिया में डूब जाएं। भाई चलिए चलिए डूब जाते हैं, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो

0: बिल्कुल चल दरिया में डूब जाएं। और वैसे यहाँ पे फीडबैक मेरे पास आया है, संध्या पटेल जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग है जी, और प्रियंका जी लिखती हैं कि बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, वाह वाह वाह वाह वाह मजा आ गया। और यहाँ पे संतोष गौंड जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी संतोष गौंड जी। और यहाँ पे बाबू लाल जी लिखते हैं कि अरुण मंडल जी का डिमांड मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। ये सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: अमन भैया गुड इवनिंग, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से और जुड़ गया हूँ आपके प्रोग्राम से। अभी जो ये चल दरिया में डूब जाएं, ये गाना अरुण मंडल जी की बहुत ही अच्छी पसंद और दिल से धन्यवाद है, और उन्होंने हमें अपने गाने में डेडिकेट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ओके, इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ डिम्पी जी का। डिम्पी जी सुनना चाहती हैं आज रपट जाए तो हमें ना उठाइए भाई कोई।

वेलकम बैक फीडबैक भी आए हुए मेरे पास बहुत सारे और मीना जी लिखते हैं वाह वाह वाह वाह बहुत ही अच्छा लगा ये गाना मुझे बहुत पसंद है। प्रियंका जी लिखते हैं कि और ये मेरी ये मुझे पसंद बहुत अच्छा है ये एंड थैंक यू दीदी इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि डिम्पी जी की च्वाइस मुझे बेहतरीन लगी है थैंक यू सो मच। और मोहन भाई लिखते हैं कि डिम्पी जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच डिम्पी जी। जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार लाजवाब गाना। और नाही जी लिखते हैं कि वाह इस डिमांड के लिए डिम्पी जी को थैंक यू कहना चाहिए। और संध्या प्रदेश जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर सॉन्ग है। और अरुण मंडल जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। और एमडी फैज जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम एकदम जबरदस्त लग रहा है थैंक यू सो मच। और सुनीता गोप जी लिखते हैं कि अमन जी मैं भी जुड़ गई हूँ बहुत बहुत वेलकम है आपका लेकिन देर कर दिए गाना निकलने के बाद आई है लेकिन कोई बात नहीं वेलकम है आपका। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ गजानन जी का ग्रुप का गाना है और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं तो सुनवा रहा हूँ इंजॉय कीजिए बिल्कुल छतरी न खोल बरसात में भाई भीग जाने दो भीगी रात में।

0: वेलकम बैक, छतरी ना खोल बरसात में मजा आया गाना सुन के, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे रंजीत कुमार लिखते हैं कि बहुत ही झक्कास गाना, वाह दिल खुश हो गया। और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, गजानन सुरोकर जी के पूरे ग्रुप का भाई अपने गाने में शामिल किए, सभी भाई को धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और यहाँ पे ये लिखी प्रियंका जी लिखते हैं कि आज तो ये बारिश के सारे गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ पे और हमारे यहाँ बहुत यहाँ पे तेज बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है सुन सुन के। जितेंद्र जी लिखते हैं कि गजानन सुरोकर जी के ग्रुप का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है। और नाहिद जी लिखते हैं कि सुपर ऑसम डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। एमडी फैज लिखते हैं वाव वाव वाव क्या गाना है, भीग जाने दे भीगी रात में, मजा आ गया इस गाने को सुनकर, धन्यवाद देते हैं सभी दोस्तों को। और प्रमोद कुमार लिखते हैं रिस्पेक्टेड दोस्त गजानन सुरोकर जी के ग्रुप फरमाइश मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मोहन ने लिखते हैं कि ग्रुप का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है जी, बिल्कुल। और राधा कृष्ण गोप जो जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और मेन अच्छे समय पे जुड़े हुए हैं क्योंकि अभी आप ही का गाना प्ले होने वाला है आपके साथ में शामिल हो रहे हैं, मतलब इस गाने में शामिल हो रहे हैं हमारे यानी राधा कृष्ण गोप जी, अनिल मेहता जी और जितेंद्र सिंह जी, ये सभी की एक ही पसंद है। जितेंद्र सिंह जी की तो अनिल मेहता जी का पहले ऑडियो सुनते हैं, शायद उनका ऑडियो है, नहीं ऑडियो नहीं है, अनिल मेहता जी भी वही है और राधा कृष्ण गोप जी, मतलब हर किसी का एक ही डिमांड है और वो है भीगी हुई है रात, जल रहे हम, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। भीगी हुई है रात, जल रहे हैं हम। मजा आ गया इस गाने को सुनकर, दिल खुश हो गया एकदम। और बहुत सारे फीडबैक भी आए हुए हैं, और संतोष कुमार जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि मस्त मस्त गाने प्ले हो रहे हैं अमन जी, मजा आ रहा है बहुत। एंड यहाँ पे शौर्य सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत दिन बाद, बहुत बहुत वेलकम है। लाजवाब सॉन्ग लिखते हैं यहाँ पे। और तहे जी लिखते हैं कि या आज तो सभी दोस्तों की मिले जुले डिमांड बहुत ही शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं। इशाक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी इशाक हुसैन जी। मोहन वाले लिखते हैं कि ये सभी दोस्तों की मिले जुली डिमांड बहुत ही अच्छी लगी है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन सर जी, आपने मेरा भी गाना प्ले कर दिया है। और संतोष गौंड जी लिखते हैं कि एक से बढ़कर गाने सुनने को मिल रहे हैं, धन्यवाद देते हैं सभी को। और प्रियंका जी लिखते हैं वाह क्या बात है, नाइस सॉन्ग सुनने को मिल गया आज तो। प्रियंका जी ने धमाल मचा दिया है, हर गाने पर फीडबैक दे रही है, थैंक यू सो मच। ये
1: क्या प्यारा गाना का डिमांड किया, एकदम दिल खुश हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एमडी फैज आलम मोहिउद्दीन नगर।
0: वेलकम जी आपका भी। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे सतीश कुमार प्रजापति जी, वेलकम है आपका भी। अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, यानी कि प्रियंका जी का ही। और प्रियंका जी एंजॉय कीजिए अपने गाने का।

0: बाबूलाल आपका सुपर डिमांड है, यानी प्रियंका जी सच में दिल खुश हो गया इस गाने को सुनकर। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि प्रियंका जी का डिमांड बहुत ही प्यारा है जी। और प्रियंका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, ओके जी। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है। और नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम ऑसम सॉन्ग डिमांड। एंड मोहम्मद शाहनवाज जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। और अच्छा ये लिखते हैं कि मैं अभी यानी दिल्ली जंतर मंतर से लाइव हूँ। अच्छा बहुत बहुत वेलकम करते हैं शाहनवाज जी आपका। और मोहन निवारी लिखते हैं कि सुपर हिट सॉन्ग चल रहा है, मनसा जी धन्यवाद देते हैं। और ये क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं।
0: धन्यवाद।
1: तो सुनते रहिए रेडियो होस्ट स्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरवजीत से थी फाजिलका पंजाब से।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे फैज जी क्या कहते हैं, भी सुन लेते हैं।
2: ये भी गाना सुपर है, सुपर ओल्ड इज गोल्ड। प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस गाने के लिए। इंडी फैज आलम मोहिउद्दीन नगर।
0: ओके जी। और यहाँ पे राधा कृष्ण को भी देखते हैं कि प्रियंका जी का डिमांड मुझे बहुत अच्छा लगा, शानदार लगा, धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है वो रश्मि जी का है और सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए रश्मि जी।

0: वेलकम बैक। और गजानन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और लिखते हैं कि हम सभी साथियों का गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बेहतरीन डिमांड, मजा आ गया सुन के। और इशाक हुसैन जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, लाजवाब डिमांड। एंड ये क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनकी।
1: सर मजा आ गया गाने में तो, झकास एकदम सुपर हिट।
0: ओके, बहुत बहुत वेलकम है सतीश कुमार प्रजापति जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो सुनाना चाहता हूँ मैं अजय कुछ जी का। और अजय कुछ जी एंजॉय कीजिए अपने प्यारे गाने को।

0: बिल्कुल भीगी भीगी रातों में आओ ना और ऐसी बरसातों में आओ ना, क्योंकि गजानंद जी लिखते हैं यानी कि प्रियंका जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच, उनको उन्होंने इतना बेहतरीन गाना सुनवाया है, और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: अमन सर जी, अजय खुश जी अपने गाने में शामिल किए और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि अजय खुश जी का डिमांड मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है जी। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह लाजवाब डिमांड। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे इसहाक हुसैन जी का है, और इसहाक हुसैन जी सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा नगमा। ओहो क्या बता दें, इंजॉय कीजिए इसहाक हुसैन जी इस गाने को। फिल्मी

बिल्कुल, और जुड़ चुके हैं यहाँ पे अमीना खान जी, बहुत बहुत वेलकम है, खुश आमदीद आपका भी। और यहाँ पे फैज लेते हैं सुपर सॉन्ग ओल्ड इज गोल्ड, मजा आ गया। एंड प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, थैंक यू सो मच। और यहाँ इशाक हुसैन जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और प्रियंका जी लिखते हैं कि ये सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत है और सबसे ये प्यारा डिमांड है, थैंक यू सो मच इशाक हुसैन जी को। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड शानदार, इस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम उनको। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाह मजा आ गया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे यानी कि प्रमोद, क्या नाम है इनका, यानी कि परवेज आलम जी हैं, और परवेज आलम जी सुनना चाहते हैं ये नगमा। इंजॉय कीजिए भाई परवेज आलम जी।

अगला जो डिमांड है बहुत ही प्यारा है, लेकिन पहले फीडबैक शामिल करता हूँ। एमडी फैजी देते हैं जी एकदम लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और मीना जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत ये गाना, अच्छा लगा। और यहाँ इशाक हुसैन जी लिखते हैं वाह वाह अमन भाई जान क्या आज के गाने चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि यानी कि भाई यानी कि परवेज आलम जी आपका डिमांड मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब ये नगमा है। जी बिल्कुल, इसी बात पर अगला जो डिमांड है आरजे सोनी जी का है, और आरजे सोनी जी हमेशा हट के गाना लाती हैं। एंजॉय कीजिए इस गाने को, मुझे बहुत पसंद है ये गाना, अच्छा लगता है सच में। जिया धड़क धड़क जाए।

0: बिल्कुल जी हाँ, धड़क धड़क बहुत ही प्यारा नगमा, दिल को सुकून देने वाला ये नगमा है और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी, इतना प्यारा आपने गाना सुनवाया, अच्छा लगा बहुत। और यहाँ पे फीडबैक दिया हमें नाजिम जी, लिखते हैं नाइस सॉन्ग जी बिल्कुल। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं सुपर डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी, धन्यवाद देते हैं आपको। और प्रियंका जी लिखते हैं बहुत ही सुंदर गाना है जी, बहुत ही शानदार पसंद है जी, धड़क धड़क जाए। थैंक यू आरजे सोनी जी, और ये सुनते हैं
1: आरजे मोहन सर जी, आरजे सोनी जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और नंदनी मां लिखते हैं कि जो भी आज गाने बज रहे हैं बहुत ही यानी प्यारे लग रहे हैं, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और इसीलिए फीडबैक नहीं दे पा रही हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आप सुन रही है ना, वही मेरे लिए बहुत है, फीडबैक मत दीजिए, सुनते रहिए। और यहाँ पे लिखती है नाहिद अंसारी जी के बहुत ही सुपर फरमाइश है, थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी को। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि आरजे सोनी जी के पसंद लाजवाब। यहाँ पे सन क्या नाम है, सतीश कुमार इन प्रजापति जी लिखते हैं कि ओके कोशिश करूंगा लेकिन उधर भेजना पड़ेगा आपको सॉन्ग रिक्वेस्ट में। गजानंद जी लिखते हैं कि जिया धड़क धड़क जाए, बहुत ही शानदार गीत सुनने को मिला, मजा आ गया। और बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि आरजे सोनी जी का डिमांड मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और इसहाक हुसैन जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब सॉन्ग है जिया धड़क धड़क जाए, ऐसा लगता है कि रात भर यही गाना सुनते रहे। हाँ बिल्कुल। और ये क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
2: ये भी गाना दिल को छूने वाला, आरजे सोनी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल खुश हुआ। MD5 आलम मयूरजी नगर।
0: इसी बात पर अगला जो डिमांड है वह हमारे शाहिद अंसारी जी का है, और ये हमेशा हट के गाने लाते हैं। इंजॉय कीजिए भाई शाहिद अंसारी जी अपने प्यारे गाने को।

0: बिल्कुल मोहब्बत हो जाती है। और यहाँ पे बहुत सारे फीडबैक भी आए हुए हैं। माखन प्रजापति जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और ये फीडबैक
1: अर्जय मंसर जी, शाहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: और आज हमारे अशोक देशमुख जी का मैसेज नहीं आया है, वो कहाँ है अभी तक, और उनका कोई फीडबैक भी नहीं आया है। हमारे राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही सुपरहिट गाना है, लाजवाब गाना है, धन्यवाद देते हैं। गजानंद जी लिखते हैं कि शाहिद अंसारी जी की पसंद मुझे बहुत ही शानदार लगी है। और अजय कुछ जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि शाहिद अंसारी जी का डिमांड मुझे बहुत ही प्यारा लगा। अमीना खान जी लिखते हैं कि ये इतना खूबसूरत गाना है और उस पर से, और आज का मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है, उस पर से ये प्यारे प्यारे गाने हैं, ओ माई गॉड बहुत मजा आ रहा है जी। ओके जी, इसी बात अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ हमारे यानी प्रमोद कुमार जी का है, और सभी को हमेशा डेडिकेट करते हैं। तो भाई प्रमोद जी इंजॉय कीजिए इस गाने को, और शायद ये गाना मैं आज पहली बार सुनने वाला हूँ।

वेलकम बैक। और यहाँ पे इनके प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद अंसारी जी, आपने मेरा फेवरेट गाना सुनवा दिया है। और प्रियंका जी लिखते हैं कि आज के सबकी चॉइस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाजवाब चल रही है। और यहाँ नाहे जी लिखते हैं कि वाह एकदम शानदार पसंद है प्रमोद जी की, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और अमीना जी लिखते हैं वाह लाजवाब गाना है, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं आदरणीय प्रमोद जी के पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ। और इनका नाम है यानी कि पूजा भास्कर जी। तो पूजा भास्कर जी एंजॉय कीजिए इतने प्यारे गाने को।

0: ओके जी, सच में गाना बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत ही प्यारा लगा है, और फीडबैक भी आया हुआ है। नाजिम जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और प्रमोद कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। दोस्तों को भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देंगे। और काजल झक्का जी लिखते हैं एकदम बहुत ही दिल को छूने वाला गाना है, धन्यवाद देते हैं पूजा भास्कर जी को। और राधा कृष्ण को लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं पूजा भास्कर जी के पसंद शानदार शानदार शानदार, दिल खुश हो गया, मजा आ गया है। और फैज जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: पूजा जी की डिमांड भी जबरदस्त लगा, एकदम खूबसूरत गाना, बहुत बहुत धन्यवाद। MD फैज आलम मोहिद्दीन नगर।
0: बिल्कुल। और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं नाइस सॉन्ग है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे रंजीत कुमार जी का है, वो सुनना चाहते हैं बेटा फिल्म का ये शानदार नगमा धड़कन।

0: ये मेहरबानी आपकी, मेहरबानी जह नसीब। ओके, और यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं वाह बहुत ही प्यारा गाना है ये बिल्कुल। और जितेंद्र जी लिखते हैं मतलब आए तो ये पसंद, रंजीत जी के बहुत अच्छे लगे, धन्यवाद देते हैं उनको। और गजानंद जी लिखते हैं धड़कने सांसें जवानी जिंदगानी आपकी, बेहतरीन लाजवाब गीत के लिए धन्यवाद देते हैं रंजीत जी को, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजिन जी लिखते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपरहिट पसंद के लिए धन्यवाद। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच इस डिमांड के लिए। और बीके पंच लिखते हैं कि वाह वाह बहुत ही बेहतरीन डिमांड है सर जी, धड़कने सांसें जवानी जिंदगानी आपकी बहुत ही पसंद आया है। मीना जी लिखते हैं वाह क्या लाजवाब फरमाइश है, दिल खुश हो गया है। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है। और यहाँ एस खानम जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग जी, बिल्कुल ये तो है। अगला जो डिमांड है ये डिमांड किनका है, नाम है इनका सोहेल जी, और सोहेल जी सुनना चाहते हैं ये गाना तुम सासों में, एंजॉय कीजिए। उतर गए,
1: तुम नजर में,
0: हाँ हाँ उतर गए

हमको दीवाना कर गए, बिल्कुल कर गए दीवाना। और यहाँ पे फीडबैक भी आ गए बहुत सारे, और यहाँ पे लिखते हैं यानी प्रियंका जी के, वाव हमको दीवाना कर गए, बहुत ही अच्छा गाना लगा है मुझे। और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं झक्कास डिमांड है जी बिल्कुल, और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं लाजवाब लाजवाब लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि तेरी मोहब्बत का हर रंग मेरी रूह में उतर गया, और तुझे सोचना और तुझे चाहना मेरी आदतों में ढल गया। एंड यहाँ लिखते हैं थैंक यू सो मच, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है, और सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे गाने को पसंद करके फीडबैक देने के लिए। एक और गाना सुन सकती हैं क्योंकि आप बनी आज के सॉन्ग विनर। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, क्या पसंद है। और नाहिद जी लिखते हैं कि सोहेल जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, थैंक यू सो मच। और दत्ता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है, थैंक यू सो मच, सुनकर मजा आ गया है। जाकिर खान जी लिखते हैं कि हमसे बिछड़ कर तुम भी कभी मुस्कुरा ना सकोगे, अपने दिल से मेरी यादों को मिटा ना सकोगे। और ये लिखते हैं यानी कि कब्र पर मेरी आकर जब तुम आंसू बहाओगे तो ये चाह कर भी मुझे फिर से जगा ना पाओगे। अच्छा जी ऐसा भी है, लेकिन अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ काजल झक्का जी का, और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहिए, स्पेशली डेडिकेट है मिट्ठू मियाँ।

यहाँ पे यानी कि लिखते हैं हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी की, ये गाना मुझे बहुत ही पसंद। थैंक यू सो मच, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है।

जब दिल के धड़कन में केहू बस जाला है। सच में मुझे लगा इस गाने के बाद इस गाने का जवाब मतलब यानी प्ले करना चाहिए, इसीलिए मैंने प्ले किया है। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि इस गाने के डिमांड के लिए एस खानम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सो मच। और काजल झका जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। लेकिन काजल जी आप बोलकर भेजते हैं तो अच्छा लगता है। और प्रियंका जी लिखते हैं कि ये भी बहुत ही प्यारा गाना लगा इनका, इनकी पसंद अलग है, हटके है, अच्छा लगा। ओके जी। और अमीना जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है एस खानम जी का। जी गजानंद जी लिखते हैं कि धड़कनों की जान हो तुम, ये लाजवाब गाना सुनकर मिला आनंद हो गया, दिल खुश हो गया है। और ओके, और यहाँ पे यानी कि कपूरचंद जी लिखते हैं कि अच्छा ओके मैं कोशिश करूंगा। एमडी फैज जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है और इस गाने को सुनकर तो दिल खुश हो गया, थैंक यू एस खानम जी। और एस खानम जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। ओके जी, आज तो आप यानी विनर थी तो गाना प्ले करना मेरा फर्ज बनता है मेरा। ओके और ओके ओके ओके यहाँ पे और अमीना खान जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने बहुत अच्छे अच्छे प्ले हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, किनका जरा सा नाहिद जी का प्ले करता हूँ। नाहिद अंसारी जी एंजॉय कीजिए अपने गाने का।

सुपर और खूबसूरत गाना चल रहा है, सभी को धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे आरिफ सिंधी जी का है, सुनना चाहते हैं दिल डूबा और तेरी आंखों में डूबा। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

और फिर वे भी मेरे पास आए ना ही जी लेते हैं आदि सिंधी जी के पसंद सुपर हिट लाजवाब। अगला भी गाना लाजवाब आने वाला है, डीके पंजी का सुनिएगा जरूर। और राधा किशन को देखते हैं बहुत ही प्यारा नगमा है। थैंक यू सो मच, मजा के सुन के नाजिन जी लिखते ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर हिट के लिए धन्यवाद देते हैं। एंड जितेंद्र जी लिखते काजल जी का और खाकी जी का खाकी मतलब फिल्म का गाना मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। ओके जी, और यहाँ पे लिखते हैं यानी कि प्रियंका जी, ओहो नाइस सॉन्ग, मजा आ गया इस गाने को सुनकर, दिल खुश हो गया है। और हमारे जागृत जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा डिमांड को प्ले करने के लिए। और यहाँ पे नीना जी लिखते हैं वाह वाह वाह बहुत ही खूबसूरत गाना, दिल खुश कर दिया भाई। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब गाना है जी, बिल्कुल इसी बात पर। अगला जो गाना है हमारे बीके पंत जी का है और सुनना चाहते हैं बीके पंत जी ये गाना, एंजॉय कीजिए चुस्की चुस्की।

लहराई है, लेकिन फिलहाल गाना अगला मैं प्ले करने वाला हूँ क्योंकि समय कम है और फरमाइशें बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये भी शानदार डिमांड है, और नाजिम जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच, और गजानंद जी लिखते हैं कि आदित्य सिंधी जी की पसंद मुझे बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। नाहिद जी लिखते हैं वाओ लाजवाब डिमांड, पीके पंजी सिंह एकदम झक्कास। और यहाँ पे रविंदर गोरखपुरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं रविंदर गोरखपुरी जी। और प्रियंका जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो हमारे यानी नाम है इनका कपूर चंद जी, डूबा रे डूबा सुनना चाहते हैं।

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं बहुत सारे, लेकिन फीडबैक मैं बाद में शामिल करूंगा एक गाने के बाद MD5 जी का।
1: अस्सलाम वालेकुम अमन भाई जान।
0: जी जी,
1: तो आज है थीम चॉइस। थीम चॉइस में है बरसना। बरसना से एक सॉन्ग है, एक डिमांड है, बाहर बरस रहा है पानी।
0: अच्छा।
1: फिल्म है गुंडागर्दी।
0: ओके।
1: तो इस गाने में सबसे पहले शामिल हैं आप और आपके दिल की धड़कन सुंदरता तिमुर जी, और साथ में यहाँ है रवि कुमार, गौरव कुमार, सौरभ कुमार और डॉक्टर PK हीरा जी, साथ में रेडियो हॉट स्टार एंड गाना के सभी सम्मानित साथीगण।
0: ओके, एंजॉय कीजिए।
1: सुनवा दीजिए सभी को ये गाना MD फैज आलम मोहिउद्दीन नगर।

बिल्कुल बाहर बरस रहा है पानी और यहाँ पे यदि प्रियंका जी लिखती हैं कि आज तो सभी गाने ओह माय गॉड बहुत ही प्यारे प्यारे बजे हैं और बहुत मजा है। रवि मोहन जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका। लिखते हैं कि डूबा डूबा वाला गाना सुनकर मजा आ गया है। और बीके पंची जी अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड चल रहा है जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे गोविंदा खंडादे जी का। गोविंदा खंडादे जी एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक धड़कने मेरी बस में रहे ना सनम वैसे फीडबैक है हमारे नाहिद जी लिखते हैं ये पसंद भी बहुत ही शानदार लगी थैंक यू सो मच संध्या पटेल जी और सौरभ सिंह जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि आज के सभी डिमांड बहुत ही शानदार चले हैं मजा आया है और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये हमारी छोटी यानी कि सिस्टर आरजे वंशिका जी का गाना बहुत ही अच्छा लगा है और प्रियंका जी लिखते हैं कि ये भी अच्छी पसंद है अगला जो डिमांड है वो यानी बिंदिया जी का है और बिंदिया जी इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो।

आज थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो यानी मीना इब्राहिम जी का प्ले करने वाला हूँ। मीना इब्राहिम जी,

बिल्कुल रिमझिम गिरे सावन। और आर्यवंशी का जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे अशोक पाल जी लिखते हैं आर्यवंशी का जी का पसंद मुझे बहुत ही पसंद आया है। और दत्ताकरण जी लिखते हैं कि यहाँ पे बिंदिया जी गाना मुझे अच्छा लगा, ओके। और मीना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए। और यहाँ पे प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है जी। और यहाँ पे लिखती है यानी कि प्रियंका जी के अमन जी आज बहुत ही प्यारा प्यारा गाना सुनने को मिला है और मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी आवाज़ भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही पसंद आती है, आप गाते हैं तो ओके थैंक यू सो मच आपका भी। अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना अभी सुनने को मिला है। और राधा कृष्ण को भी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है सुनवाता हूँ मैं आपको इनका अशोक पाल जी का। अशोक पाल जी इंजॉय।

0: मुझको थाम ले,
1: जिंदगी से भाग कर आया हूं।
2: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: নাম আছে।
1: जाने मन आ जा, तुम्हें अपना समझकर कोई आवाज दे रहा है।

बिल्कुल देर लगेगी जी, बहुत ही देर लगेगी। वैसे फीडबैक भी आया हुआ है, लेकिन मैं क्या ही करूँ, सभी के गाने छूटने वाला भी है। बाबूलाल जी लिखने का धन्यवाद, और एमडी नाजिम जी लिखने की ऑल टाइम ये ब्लॉकबस्टर सुपर हिट पसंद है, धन्यवाद देते हैं। नहीं जी लिखने की मजा आ गया।

और प्रियंका जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, लाजवाब, शानदार, मजा आ गया। धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए। इसी बात पर जो डिमांड मेरे सामने दिख रही है वो है ये रश्मि जी की, और सुनना चाहती है थम के ब्रश ये कुमार शानू की आवाज में। सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए रश्मि जी।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर हिट के लिए धन्यवाद देते हैं।
1: करके साफ बहाना
0: ये फरमाइश रही रश्मि जी, थैंक यू सो मच। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड, मजा आ गया सुन के। और यहाँ पे यानी प्रियंका जी ने तो मैसेज का झड़ी लगा दिया, ओ माय गॉड। लिखते हैं कि सभी की पसंद बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, जितने भी सभी की तारीफ करें उतना ही यानी कम है। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि औसम सॉन्ग है लाजवाब डिमांड। इसी बात पगला जो डिमांड है मैं सुनवाना चाहता हूँ हमारे हुकुम चंद जांगिड़ जी का। इंजॉय कीजिए हुकुम चंद जांगिड़ जी।

0: वाह, और वैसे ये गाना बहुत ही लंबा है, लेकिन यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच। और रवि मार जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: थम के बरस हो जरा, थम के बरस, थम के बरस हो जरा, थम के बरस, मेरा महबूब आने वाला है।
2: बहुत ही सुपर, लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया।

बहुत ही प्यारा गाना है और यहाँ पे नाहिद जी लिखते हैं सुपर ब्यूटीफुल सॉन्ग है जी बिल्कुल। और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि हुकुम चंद जांगर जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। अमीना खान जी लिखते हैं कि ये गजल बहुत ही शानदार है और हमारे अब्बू की यानी कि पसंदीदा गजल में से एक है। ओके क्या बात है। और यानी कि प्रियंका जी लिखते हैं कि वाह आग लगा दी, एकदम अलग ही अंदाज में ये गाना है।

और आज के यहाँ पे यानी लीडर बोर्ड में सबसे आगे चल रही है यानी प्रियंका जी। तो भाई यानी प्रियंका जी, आज आप यानी के क्या ये बताइए, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? मुझे जल्द से मैसेज करें, अगर आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा, या आप अपने गाने भी सुन सकती हैं। मुझे जल्द से जल्द बताइए प्लीज। और यहाँ पे आज के जो सॉन्ग यानी कि विनर बनी थी यानी कि पूजा भास्कर जी, उनका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। एंजॉय कीजिए पूजा भास्कर जी।

0: ओके, इन्होंने लिख दिया कि मुझे कॉल कीजिए, तो ठीक है मैं आपको कॉल लगाता हूँ। बहुत बहुत वेलकम है आपका प्रियंका जी, और आज आप बनी है यानी टॉप लीडर में नंबर वन और सबसे ज्यादा।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बताऊंगी, तुझे दिल की बात बता दूं। नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं।

0: बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगी? आज स्टार्टिंग से लेकर अभी तक लगातार मैसेज कर रही हूँ, माई गॉड, सबसे ज्यादा मैसेज
1: जी। मिस्टर इंडिया का श्रीदेवी का सॉन्ग सुना दीजिए।
0: तो बताइए वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: कांटे नहीं कटते दिन रात क्या?

और ये पसंद मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, इतना प्यारा गाना सुनाया आपने।

वेलकम बैक और फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ दत्ताक्रम जी का। एंजॉय कीजिए जल्दी से दत्ताक्रम जी।

और चूंकि अब मेरे पास समय कम है, इसलिए बहुत से दोस्तों के गाने को मैं यहाँ पे यानी कि प्ले लिस्ट में ला के जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज वहाँ से गाने सुनते रहेंगे, सभी के गाने मैं प्ले यहाँ पे

अक्का जी के थैंक यू सो मच, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। ओके, धन्यवाद करते हैं। ओके जी, और इसी बात पर यहाँ पे अगला जो एक आखिरी गाना मैं यानी कि प्ले करके जा रहा हूँ, और ये गाना है हमारे नाम है उनका सुनील कुमार जी, बांका बिहार वाले, आंचल उड़ाया मैंने, इंजॉय कीजिए। और इसी गाने के साथ मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत, मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

तुमने। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

मोहब्बत। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।